सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सबूं।

सकल मलेच करो रण कता, जे अस तुझ तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुखित वह मरे।

मेरा गुरु सो तन सुहावा, ये सो तन सुहावा, ये वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु बोले सोनिहाल सत्याकाल बोले सत्याकाल बोले सोनिहाल सत श्री अकाल।

इंद आखै गो पीता गोविंद वाखै ईश्वरा के सिद्ध आखै कित कीते बुद्ध आखै दान वाखै देव आखै सुर नर मुंजन सेव।

प्रसाद विचारे। गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पाए आले। गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले, गावह जोत महंबल सूरा, गावह खानी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, सही तुदनु गावह जो तुद पावन।

रूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, आलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूत है, अचंज है, अमीक है, अरफीक है, अतंध है, अबंद है, नृभूज है, असूज है, अकार है, अजाल है, अल्लाह है, अजह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है,

यंत्र यंत्र नमो एस्ते एस्ते नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अदु अर्थ अर्दंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वर पुरुष पारं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयान अशेदीय भेदी अनाम अकाम समस्त पराजी समस्त सताम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु है अजू है आदेश है अपेस है भुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने नमस्त्वं नरे नाथे नमस्त्वं परमार्थे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगी नमो सर्व भोगी नमो सर्व जीत नमो सर्व पीत नमो सर्व ज्ञान नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजय खिजय अभिजय समस्तम प्रसिद्धि कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणास सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्म्य अमृत धर्म्य अकाल जोग्य चल भोग्य चल राज अटल साज्य अकल धर्मंग अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं भुक्ता सर्वं न्योता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल चंत्वै प्रसाद आद रूप अनाद मूर्ता जोन पुरखा पार सर्व मंत्रमान देव पेवे आदोदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आदस एक दे सौर न पेश जाकर रूप रेख नाराग जत्र तत्र दशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मन सर्वत्र मन सदैव मन तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल ने अंत को फिर एक दे भेव न जाने जे भेद और कदेव रूप रंग न जात पात सो जाने के जे तात्मात न जात जाकर जन्म मन विहीन चक्र बक्र फिरे

भगवती संतु प्रसाद कि जा हरजहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि उस नल चिराग का के कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज करेंद है करीमुल कमाल है कि उसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकम परनास है समस्त निवास है अगंजुल गनीम है रजाय रहीम है समस्त जुबा है कि साहिब की राह है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सर्वर्गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमेश समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है आमी कुल अमा इमा है अग्रिमुल कमाल है कजूरत जमाल है कि अचुन प्रकाश है कि हमें तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि हमें तो बेपूत है कि हमें तो पसा है कि आत्म प्रवाह है

करुणालय है और काले है, खलखंडन है, मैं मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्वोबारण है, धृत के तन है, जाके कर्ण है, मनमानी है, जगजानी है, सर्वम पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश

अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, हम करुणाकृत हैं, अकृताकृत हैं, तरणीकृत हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजवाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वम्भर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्पायक हैं, पपंजन हैं, अरगंजन हैं, रिप्तापन हैं, जपजापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग पर्यात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र।

तत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय अनादम विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी शांत अजय अलय अपय अभय अपुवज अनास अकाश अगंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ अप्रमाथ अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे सुमस्तुल निवासे नृकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुत्रमंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रम प्रणासी क्रीमुल को निंदा सुमस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पूते स्वयं अवसुपंग सर्व

आप अपनी बुद्ध है देती बन पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पहु राव कहीं पूपा अंडज जीर जसेत जकीनी उत्कुज खान बहोर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पहु संकरु अकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव या जुगात स्वरूप सुयंपव

देह बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुमराता, किन्विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता।

पड़ेल। सुने गुंग जो याहि सुरसन पावई, सुने मूढ़ चितलाय चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निक न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्थ सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी।

जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै हुवै तां सन्मुख सिख कोई जीव रहै गुरु नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रहे परने गुर बिने अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते बिमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै

मन चाओ भया प्रभु आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रिव मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए।

कर्म अगत पाया ता तन्ने कसम त्याया। एना जनता के वच कितने तत वेख जगत पाया, इकना नु तू मेले का पुत तु खवाया। गुर कृपा जान जिते तुझा बुझाया, सहज इस समाया, सहज इस समाया।

पढ़ पुस्तक संध्यावादम सिल पुछ सिल पूज सबगल समादम मुख चोट बेवखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लीलाटंग दोय दोती वस्त कपाटंग जे जान।

थोड़ी चित्त अंदर सब को गिना दृढ़ चलाइंदा आप पे दे बढ़िया यहां पे कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तन दिलाइंदा नदर पट्टी जे कर सुल्ताना काव कराइंदा धर्मंगन पिकना पाइंदा धर्म